0: यो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले अपराह्न को ठीक 3 बज्यो।
2: को आवाज समय को आवाज

सर, एलजी ले ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज। अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी को कंप्लीट रेंज, 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई। नागरिकता भाई पुग्छ, हर एक घर को खुशी, घर घर में एलजी। एलजी, लाइफ्स गुड।

0: आवाज बिहीन को आवाज परिवर्तन को संवाहक रेडियो दीदी बहिनी 95.2 MHz।
1: सीता ए सीता हजुर रेडियो खोल त खबर चौतारी आउने बेला भयो।
2: ल ल खोलिहाले।